यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केल वेणुधुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ठेवून आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: उमंग उत्साह का महत्व. उत्सवों और त्योहारों के देश का नाम है भारत, जहाँ हर दिन उमंग से भर देने वाले नित नए तीज त्योहार मनाए जाते हैं. इन रंगारंग रोचक रमणीक आयोजनों का एकमात्र लक्ष्य है जनमानस के दिलों में उमंग उत्साह का ज्वार भरना. जब हृदय सागर में उमंग उत्साह की लहरें उठती है तो दामन हंसी खुशी और मौज मस्ती के मोतियों से भर जाता है. उमंग उत्साह तो वो अजब चाबी है जिससे प्रकृति और परमात्मा के सभी खजानों के द्वार सहजता से खुल जाते हैं. उमंग उत्साह तो यशस्वी जीवन का प्राण और जीवंतता का प्रमाण है, जिसके बिना ना जीना संभव है ना ही यश. उमंग उत्साह अर्थात मन की मायूसी, निराशा, उदासी इत्यादि का त्याग कर मन में चुस्ती और फुर्ती भर देना. निराशा उदासी से मुक्त हो किसी भी काम के लिए जोश के साथ खड़ा हो जाना. आलस का अंत कर गर्म जोशी से कार्य की शुरुआत करना भी उमंग उत्साह है. वास्तव में उमंग उत्साह तो सफल अभियान और यशस्वी कार्य का यथोचित श्री गणेश है. ये वो चमत्कारी दवा है जिसे पीते ही बड़े बुजुर्ग भी तरुणाई का अनुभव करने लगते हैं. उमंग उत्साह तो सफल व्यक्ति के वो दो पर है जिसके दम पर बाल, युवा, वृद्ध यश के आकाश में ऊंची ऊंची उड़ाने भरते हैं और सफलता के सितारे तोड़ने में सफल हो जाते हैं. हृदय का महत्व सांसों से है, ऐसे ही कर्म का महत्व भी उमंग उत्साह रूपी प्राणवायु से है. उमंग उत्साह तो ऊर्जा का उद्गम स्थान और शक्तियों का अक्षय पात्र है. जिस गाड़ी में ईंधन ना हो वो भला चल सकती है? नहीं. ऐसे ही बिना उमंग उत्साह रूपी ईंधन के जीवन रथ नहीं चल सकता. जैसे गर्मी में झरने की शीतल फुहार राही को सुकून देती है, ऐसे उमंग उत्साह की बूंदे भी उदास और मायूस व्यक्ति को पल भर में तरोताजा कर देती है. हल चलाने से भूमि बीज बोने लायक बनती है, ऐसे ही उमंग उत्साह रूपी हल से कर्म भूमि पुण्य के बीज बोने लायक बन जाती है और श्रेष्ठ कर्म के बीज से सुख शांति और समृद्धि के फल फलते हैं. अतः उमंग उत्साह से जीवन की कर्म भूमि में कर्मठता के बीज बोइए और अपना दामन संपन्नता, समृद्धि और सफलता के सितारों से भर दीजिए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं.

0: वेणु धोनी 90.4 FM KLE गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने 4th अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब चार दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमा क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिगबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
3: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, तीन साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: FM वेणुधुनी KLE कंसू पे आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कंसू।
9: KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ
10: ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಹಾಗೂ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ
9: KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕೇಲಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ MRC ಹಿಂದುಗಡೆ ನೆಹರು ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾದ KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
10: KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
9: ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
10: ವಿಳಾಸ KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, KLE's ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು MRC ಹಿಂದುಗಡೆ ನೆಹರು ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ.
9: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831255250 ಮತ್ತು 2473777, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6360712326 ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈಲ್ 1099.
10: ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ KLE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ.
11: KLE ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗಾವಿ 2026-27 ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬಸವನ್ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಬಿಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ, ಎಂಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು PhD ಸೇರಿದಂತೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆವರಣ, ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ನ್ಯಾಕ್ A+ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು NIRF ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831247139, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9740639702, ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.kleefarm.edu.

माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। देयर इज वन नेम यू कैन ट्रस्ट, केएलई फर्टिलिटी सेंटर विद साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केएलई आईवीएफ के साथ। आज ही विजिट करें केएलई फर्टिलिटी सेंटर, ओपीडी नंबर 97, शरावती सेकंड फ्लोर, केएलईज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड एमआरसी बेगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377, एक्सटेंशन 1530।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसू। भाषा संगम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि जनरल न्यूट्रिशन है। दोस्तों, हम जो खाते हैं, हमारे प्लेट में जो खाना रहता है वो कितना हेल्दी है हमें पता नहीं रहता, जबकि दिन भर में हम काफी चीजें खाते रहते हैं, बट हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है वो भी हम जानते नहीं है। तो इसी के बारे में हमें ये सभी बातें समझाने के लिए मेरे स्टूडियो में मौजूद है सुप्रजा यस, न्यूट्रिशनिस्ट एंड होलिस्टिक हेल्थ कोच है। उसी के साथ साथ वो ओन योर हेल्थ की फाउंडर भी है। मैडम वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच मनीषा जी।
0: आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली डेली रूटीन में हमें काफी हम खाते रहते हैं, कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं, बट कौन से

0: चीज से या फिर क्या हम खाते हैं उससे हमें कितने हेल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में हम जानते नहीं है। हालांकि सब लोग बोलते हैं कि आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम करने चाहिए, बट वो कौन से फल में रहे या फिर वेजिटेबल में रहे, वो कौन से इसमें हमें क्या क्या मिलता है, वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता। तो ओवरऑल हम जनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो जनरल न्यूट्रिशन मींस क्या रहता है?
1: तो जैसे आपने बोला, न्यूट्रिशन जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत डीप है, पर लोगों को यही लगता है कि न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कि कम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, इतना ही लोगों को समझ में आता है। और ये इसके लिए भी होता है क्योंकि हम इतना एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि लो कार्ब्स मतलब कम कार्ब्स, हाई प्रोटीन, लो फैट या कीटो डाइट या वो, मतलब अलग अलग अलग अलग तरीके का ना इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है इन चीजों के बारे में। बट एक्चुअली जो न्यूट्रिशन की बात करें तो ब्रॉडली कैसे बोलते हैं कि हमारा जो खाना है, जो बॉडी में जो जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, इन पांच चीजों के बारे में मेनली फोकस रहता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स खराब है क्योंकि उससे मोटापा होता है।
0: एग्जैक्टली।
1: बट लोग ये नहीं समझते हैं कि जो हमारे कण, हमारे बॉडी में जो सेल्स है, हर एक सेल को जो ऊर्जा या एनर्जी का जो जरूरत है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। तो हमारा जो बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट खराब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट हमें जरूरी है। हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है या जो क्षमता है, वो जो भी खाना होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो इवेंचुअली मतलब एट द एंड वो जाके कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में ही होता है। क्योंकि बॉडी का जो अब्सॉर्प्शन है, जैसे मैंने बोला हर सेल को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ग्लूकोज होती है। तो कोई भी खाना जो खाते हैं जब ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके सेल के अंदर जाके वो ऊर्जा पैदा करती है। तो वही ऊर्जा से हमें अपना सारा एक्टिविटीज जो काम है वो सब हम कर सकते हैं। तो कार्ब्स आर बैड, कि कार्ब्स खराब है, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। कार्ब्स हमारा जरूरी है, हमारे लिए फ्यूल है, हमारे लिए एनर्जी सोर्स है। कार्ब्स जो सबसे एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब जो सबसे इजीली जो हमें बॉडी को मिल जाता है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। इसके लिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो बॉडी यूज करती है, जब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते हैं तो नेक्स्ट जो होता है वो फैट होता है, जिसको बॉडी बर्न करती है।
0: अच्छा।
1: बट फैट में क्या है, जो कैलोरीज है, जैसे बहुत लोग समझते हैं ये टर्म कैलोरीज, राइट? तो कैलोरीज मतलब अगेन कैलोरी जब ब्रेक डाउन का मतलब होता है एनर्जी देना, ग्लूकोज देना। तो कार्ब्स में जो हर एक ग्राम पे एक कार्बोहाइड्रेट का वो 4 कैलोरीज आता है, बट वही चीज 1 ग्राम फैट का अपने को ऑलमोस्ट 9 कैलोरीज आता है। तो बॉडी का जो रिजर्व जो रहता है ना वो फैट होता है। अगर बॉडी कार्ब्स नहीं मिलता है, जो इजिली वो नहीं ले पाता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो फिर वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो होल कॉन्सेप्ट है कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन जो है वो बहुत मेहनत के साथ बॉडी उसको ब्रेक डाउन कर पाता है। प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी अलग से रिक्वायरमेंट है।
0: Correct.
1: तो प्रोटीन बहुत इनएफिशिएंट मतलब बिल्कुल ही लास्ट, और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास, अगर बॉडी को ऐसा लगता है तब जाके वो फिर प्रोटीन को यूज करता है एनर्जी के लिए। क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसके लिए फोकस हमारा होना चाहिए कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, ना कि, हाँ ये एक चीज है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज किसी भी फॉर्म में हम लोग खाएं, एक्स्ट्रा जो बॉडी को जरूरत नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा हो वो जाके फैट के जैसे स्टोर होता है।
0: अच्छा।
1: तो इसके लिए कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स को इक्वेट नहीं कर सकते, मतलब दोनों सेम नहीं है। कैलोरीज जो है वो जो खाना होता है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है और उससे जो एनर्जी पैदा होती है उसको कैलोरीज में कन्वर्ट होता है। बट खाना जो खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ऐसे करके अलग अलग पदार्थ होते हैं उसमें, और ये भी लोगों को लगता है कि राइस खाने से हम मोटा होते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, 100%. और आलू खाने से हम ठीक नहीं है क्योंकि आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है. यू नो, ये भी बहुत सारा एक मिथ है, लोगों को लगता है कि ये गलत है. बट एक्चुअली देखा जाए तो कुदरत ने ना कभी भी खाने को एक, जैसे हमारा बॉडी भी जैसा है कि वो पूरा अलग अलग पार्ट से जुड़ा हुआ है, कोई एक ऐसा लिवर अलग से, हार्ट अलग से नहीं है, सब जॉइंट है. वैसे ही कुदरत ने भी खाने को, जैसे चावल हो गया या आलू हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट तो है बट उसके साथ साथ और भी पौष्टिक पदार्थ है उसके अंदर. तो इसे ब्रेक डाउन करके कभी भी खाने को प्रोटीन फैट ऐसा देखना बहुत गलत हो जाता है. हमें ये फोकस रहना चाहिए न्यूट्रिशन के स्टैंड पॉइंट से कि भाई मैं कितना एक्सेस में खा रहा हूँ या खा रही हूँ, वो अच्छा. एक फोकस रहना चाहिए कि ज्यादा ना खाए, क्योंकि जैसे मैंने बोला एक्स्ट्रा जो भी आता है बॉडी के अंदर वो फैट में स्टोर होता है. तो ये ध्यान में रखे कि जो भी मैं खाऊं जितना कुदरती तरीके से खाऊं उतना अच्छा है मेरे लिए. इसलिए फ्रूट्स,
0: अच्छा
1: फ्रूट जो आता है वो एक्चुअली फ्रूट देखा जाए तो मीठा रहता है टिपिकली जो है. जैसे सेब खा लिया तो सेब में फाइबर बहुत सारा है. सेब एक्चुअली फ्रूट जो है वो प्योर शुगर्स है, मतलब वो बहुत जल्दी ऐसा ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज के अंदर. बट उसके साथ जैसे मैंने बोला फाइबर है, तो फाइबर के साथ साथ बहुत सारे जो बाकी न्यूट्रिएंट्स या बाकी जो पौष्टिक पदार्थ है वो भी जुड़े हुए रहते हैं.
0: करेक्ट.
1: तो हम एप्पल ज्यादा नहीं खा सकते या कोई भी फ्रूट ना एक या दो खा सकते, उससे ज्यादा नहीं खा सकते. ओवर ईटिंग जो बोलते हैं ना, हम इन कुदरती पदार्थों से हम लोगों को ओवर ईटिंग होता नहीं है. ओवर ईटिंग होता है जब हम लोग कुछ मैनमेड कुछ निकाल देते हैं, कुछ चीजें इसमें से ऐड कर लेते हैं. तो उसके वजह से क्या है कि हमारा जो वायरिंग है
0: अच्छा
1: वो थोड़ा चेंज होके हमें लगता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं. उस तरीके से हमारा कैलोरीज जो है वो बढ़ जाता है और हमें ये लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स खराब है, प्रोटीन खराब है. बट फोकस सिर्फ ये रहना चाहिए कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये सारे खाने में होता है. जैसे मैंने बोला आलू में भी प्रोटीन होता है, फैट भी होता है.
0: अच्छा.
1: राइस खराब नहीं है बट जिस तरीके का राइस खाते हैं हम लोग, इतना पॉलिश्ड, इतना वाइट, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है. तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रख के खाने को तोड़ के ना खाने, बट जैसा हमारा प्लेट होता है कि दाल हो गया, सब्जी हो गया, चावल हो गया, तो ये थोड़ा अच्छे से मात्रा में हम लोग बैलेंस डाइट जो बोलते हैं उस हिसाब से अगर हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे खाए, ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए या पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए, बट वो सब जितना कम कर सकते उतना अच्छा है. बट नेचुरली जो खाना बनता है घर के अंदर, जो पौष्टिक मम्मियाँ या फिर दादियाँ जो घर पे बनाती है या हम खुद जो बनाते हैं, मतलब नॉट जस्ट वुमेन बट हाँ प्रैक्टिकली जो बहुत सारे आजकल मर्द भी खाना अच्छे से बनाते हैं, तो घर का खाना होल तरीके से, बैलेंस तरीके से, कि दिन में फल भी हो गया, वेजिटेबल्स भी हो गए, दाल चावल, यू नो, ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर खाना रेगुलरली खाते रहे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये ब्रेकडाउन जो हम लोग बात करते हैं इसका जरूरत नहीं पड़ता है.
0: करेक्ट. अभी काफी अच्छी तरह से आपने समझाया है. बट अभी कैसे हुआ है, जैसे आपने बताया कि अलग अलग टाइप के डाइट आए हैं और एक फैशन की तरह लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उसके साइड इफेक्ट्स उनको पता नहीं रहेंगे शायद, या फिर उतनी डीप स्टडी उन्होंने की नहीं होगी. बट इसको लेके, मतलब अभी जो फैशन या ट्रेंड चल रहे हैं अलग अलग डाइट के, उसको लेके कुछ साइड इफेक्ट्स भी उनको आगे चल के होंगे क्या?
1: डेफिनेटली. देखो, डाइट जो चीज है, वो वर्ड डाइट ही अगर देखा जाए कि लोगों को लगता है मैं डाइट करूंगा तो, या मैं डाइट करूंगी तो मेरा वेट लॉस होगा. लोग टिपिकली डाइट की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कैलोरीज कम करना है. बट डाइट जो है वो एक महीना, दो महीना काम करता है. आप डाइट लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं. लाइफ लॉन्ग आप खाना खाते हैं बट आप डाइटिंग लाइफ लॉन्ग करते हैं क्या? कभी नहीं कर पाते हैं.
0: नहीं हो पाता. करेक्ट.
1: दैट इज व्हाई डाइट डू नॉट वर्क. इसलिए हम कभी भी डाइट करके, ये जो टर्म है डाइट जो है वो एवरीडे होना चाहिए. मतलब हमारा जो खाना है रेगुलर वो डाइट होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली क्या है कि बदकिस्मती से ना डाइट को हमने एक ऐसा फैंसी वर्ड करके कर लिया है कि मैं ये डाइट कर रहा हूँ, मैं वो डाइट कर रही हूँ, मैं अलग अलग है. यूर राइट कि मतलब बहुत सारे तरीके के डाइट है. मैं भी बचपन से, जब मैं बड़ी हो रही थी उस टाइम पे हम ये जीएम डाइट और एटकिंस डाइट ये कुछ कुछ चलता था कि एक दिन सिर्फ ये खाना चाहिए, एक दिन वो सिर्फ वो खाना चाहिए. अब ये सब टेम्पररी है, डाइट डू नॉट वर्क, पूरा मतलब जिंदगी भर आप नहीं कर पाते हो। फोकस, जैसे मैंने पहले भी बोला था, फोकस हमारा यही होना चाहिए कि मैं डेली हर मील जो मेरा है वो कितना पौष्टिकता से भरा है, कि उसमें सारे जो मुझे न्यूट्रिएंट्स, मेरे बॉडी को जो कुदरती तौर से जो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है, जो पौष्टिकता की जरूरत है, वो मुझे मिल रहा है, ये फोकस रहना चाहिए, ना कि मैं ये डाइट करूं। क्योंकि बहुत सारे डाइट्स रिसर्च भी है कि लॉन्ग टर्म कुछ कुछ डाइट्स जैसे है उसमें डेफिशिएंसीज भी हो सकते हैं, फिर उसमें एक्सेस करने के वजह से, जैसे हाई फैट डाइट हो गया या लो कार्ब डाइट हो गया, यू नो हाई फैट डाइट में क्या है, लॉन्ग टर्म जैसे जाके एथरोस्क्लेरोसिस की, हार्ट के इश्यूज, बिकॉज फैट बहुत ज्यादा होता है बॉडी में, टेम्पररी इनिशियली जो है वो वेट लॉस होता है, बट एक टाइम के बाद रिसर्च आजकल निकलने लगा है कि हाई फैट डाइट्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, मतलब दिल की दौरे पड़ने का या एथरोस्क्लेरोसिस की, आर्टरीज में जाके क्लॉग होने का, फैट डिपॉजिट होने का, तो ये चांसेस ज्यादा है। तो लोग करते हैं डाइट्स, एक साल भी करते हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं उसको छुपा के रखती है इन चीजों को। और हमारी बॉडी भी कैसा है ना, कि ये बहुत सहनशीलता है अपनी बॉडी में, वो इतना इजिली ब्रेक डाउन नहीं होता है ना, हमारी बॉडी जो है वो कोशिश करते रहता है कि मैं सब चीजों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ूं। और इसके लिए हमारी जो बीमारियां है वो बाद में प्रकट होती है, कि इनिशियली जैसे ही खाते हैं वैसे ही बीमारी नहीं होती है।
0: करेक्ट।
1: एक थोड़े टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, कहीं ना कहीं छोटे छोटे छोटे छोटे होके फिर कुछ बड़ा बड़ा बीमारी जाके निकलता है, यू नो। तो डाइट्स कभी काम नहीं करता है। तो मेरे लोगों का यही कहना है, और मेरे प्रैक्टिस में भी मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि देखो मैं डाइट नहीं दूंगी आपको, आपका आज का जो खाना है, जो रोज आप खाते हो, उसको आप और सेहतमंद कैसे बना सकते हो। आप चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, बट उसी खाने की थाली को आप और सेहतमंद कैसे बना सकते हैं, ये हमारा फोकस होना चाहिए। ना कि अच्छा मैं लो फैट करूंगी या हाई फैट करूंगी, लो कार्ब करूंगी जिससे मेरा वेट लॉस होगा, या तो ऐसे बहुत सारे जो फैट डाइट्स जो बोलते हैं ना, कि इसमें मुझे तो विश्वास नहीं है। लोग करते हैं, लोगों को बेनिफिट होता है, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होता ही है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है, मतलब जिंदगी भर आप नहीं कर पाओगे। दूसरा जो है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होता है। तो बेस्ट मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आपका जो रोजमर्रा का खाना है, तीन वक्त आप खा रहे हो, तो वो तीन वक्त का खाना जो है उसको आप ज्यादा पौष्टिकता कैसे बनाए, क्योंकि बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो पौष्टिकता है, पौष्टिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका रिक्वायरमेंट है।
0: करेक्ट।
1: तो उसी पे फोकस हमारा होना चाहिए।
0: आज का जो टॉपिक है जनरल न्यूट्रिशन के बारे में, तो उसके लिए जो नॉर्मल लोग हैं जिनको किसी भी टाइप की बीमारी नहीं है, उन लोगों के लिए हम कैसे बताएं कि जैसे अभी अभी आपने बोला कि उनकी थाली अच्छे कैसे हो जाए, उस पे मैं काम करती हूं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे?
1: गुड क्वेश्चन। और ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स को भी जो फोकस नहीं रहता है, और ये एक वर्ड है फाइबर, जो फाइबर जो टर्म है ना, इसको क्या रेशा बोलते हैं। आप कोई भी पत्ते को आप फाड़ोगे तो एक स्ट्रिंग निकलता है एक ना, तो वो फाइबर होता है। कि आप एप्पल को जब चबाते हो तो वो जो बाइट एक होता है, एक जो आवाज आती है आपको क्रंच करके, वो फाइबर के वजह से है। तो ये जो है, ये हमारे खाने में मिसिंग है, जो रोजमर्रा का खाना है हमारा। क्योंकि जैसे मैंने बोला, राइस खराब नहीं है, व्हाइट राइस जिस तरह से हम लोग राइस को खाते हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके वजह से क्या है, क्योंकि हम चावल को या अनाज में से पूरा उसका जो फाइबर और पौष्टिक तत्व है वो सब निकाल के हम लोग खा रहे हैं, तो इसके वजह से चावल, आज का जो हम चावल खा रहे हैं वो खराब हो रहा है। सदियों से, मतलब आप देखा जाए जनरेशन एंड जनरेशन से, हमारा जो प्राइमरी खाना है वो चावल ही है। बट चावल के साथ साथ हम बहुत सारे और चीजें खाते थे, चावल हमारा इतना ज्यादा नहीं होता था। आज आप थाली में अगर किसी के भी देखो तो चावल ऑलमोस्ट 3/4 पोर्शन जो है वो चावल या बाकरी या रोटी या जो भी है, यू नो जवार हो, कुछ भी हो, ग्रेन हो जाता है, अन्न जो हो जाता है ना, तो वो ज्यादा होता है। और जो सब्जी हो गया, दाल हो गया, या कोई और भाजी हो गया, या जैसे यू नो ये स्प्राउट्स हो गए, ये सारी चीजें, चटनियां हो गई, तो ये सारी चीजें, बिल्कुल तरकारी जो है, थाली में ना तरकारियां कम हो गई हैं। तो हमें सिर्फ ये फोकस लाना है कि जो पुरानी तरीके से जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पहले जैसे खाते थे उस पे थोड़ा फोकस रखें कि ज्यादा तरकारी लाए, भाजी तरकारी जो है, साग के पत्ते जैसे हरी पत्तियां की, पालक हो गया, शेपू हो गया, मेथी हो गया, रोज एक ना कोई एक पत्ती किसी फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में या रोटी के अंदर या फिर दाल में ऐसे मिला, फिर एक फ्रूट तो एटलीस्ट एवरी डे, कोई भी फल जो सीजन में है वो कुछ ना डेली एक फ्रूट इंक्लूड करे। क्योंकि कुदरत जो ये कलर्स, कलरफुल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना, इसमें बहुत पौष्टिक तत्व है।
0: अच्छा,
1: ये पौष्टिक तत्व के वजह से ही ये कलर्स आ रहे हैं। तो जो लाल है, हरा है, पीला है, हम अगर फोकस इन चीजों पे करें तो फिर हमें ऑटोमेटिकली ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। रोज जो थाली है, तीन वक्त का खाना जो हमारा है, अगर इन थोड़ा कलर्स पे फोकस करें, ये जो फाइबर जो मैंने वर्ड यूज किया ना, जो रेशा होता है खाने के अंदर, इस पे अगर हम फोकस करें ना, तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली थाली जो है वो बेहतर होगा, हमारा जो सेहत है वो इम्प्रूव होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले 30-40 साल में मैंने नोटिस करा है कि हमारा जो खाने में फाइबर निकल गया है, सब कुछ हम लोग बहुत रिफाइंड तरीके से खा रहे हैं। तो उसके वजह से क्या है कि बीमारियां भी बहुत ज्यादा रिफाइन होके आ रही है। पहले डायबिटीज बहुत कम लोगों में होती थी, अभी डायबिटीज इज वेरी वेरी कॉमन, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड थर्ड पर्सन है यहाँ पे जो डायबिटीज है, मतलब यू नो दुनिया में इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। पॉपुलेशन में तो ज्यादा है ही है, तो पॉपुलेशन के साथ साथ बीमारी भी सबसे ज्यादा है। तो ये इसके लिए हुआ है, ना कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से, बाकी फाइबर निकाल दिया गया है हमारे खाने से। तो जो रोजमर्रा का खाना है उसको सेहतमंद बनाने के लिए फोकस ये करें कि फैट भी कट डाउन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, फैट के वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज आते हैं बॉडी में, तो हमारा फैट भी जो है वो कंजम्पशन जो हम खाने में जो लाते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि तले हुए खाने जो है कभी कभार हम लोग करते थे, कि मौसम बदल गया है, बारिश हो रही है, थोड़े पकोड़े खा लिए।
0: हाँ।
1: आज क्या है, पकोड़े हम लोग स्नैक में हर रोज खाते हैं, पकोड़े समोसे चले, मतलब ये ना जो चलता ही रहता है। और दूसरा भी एक हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंज आ गया है कि बोर होता है तो हम लोग खाते हैं, कि और कुछ करने को नहीं है इसके लिए चलो कुछ है खाते हैं, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है खाते हैं। हम लोग ना वो पूरा जो शिफ्ट हो गया है खाने की तरफ, खाने को हम लोग एक कंफर्ट की तरह देखते हैं, ना कि ऊर्जा या एनर्जी देने वाली चीज। जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ही ज्यादा हम लोग खाने पे फोकस दे रहे हैं। तो जहां हम लोग शायद दो वक्त का खाना खाते थे, एक मुहावरा होता है ना कि दो वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत है, तो वो एक्चुअली दो वक्त ही जरूरी है बॉडी के लिए।
0: बट पर अभी इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है ना, तो लोगों को उतनी अहमियत नहीं रही है।
1: करेक्ट। तो खाना जो है, इंग्लिश में एक फ्रेज है जहाँ मैंने पढ़ा था कि हम लोग ओवर फेड है बट अंडर नरिश्ड है। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो खाना बहुत है, जैसे आपने बोला हर जगह देखो खाना तो मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ फॉर्म में मिल जाता है, बट जो बॉडी को जो नरिशमेंट है, जो पौष्टिकता मिलना है वो नहीं मिल रही है, इसके लिए वी आर अंडर नरिश्ड, तभी हमको बीमारियां भी हो रही है, मोटापा भी हो रहा है, क्योंकि जो पौष्टिक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो मिल रहे हैं। जैसे एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं चाहिए अपने को, बट क्योंकि खाना इतना प्रोसेस्ड है तो एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रहे हैं, और क्योंकि खाना इतना प्रोसेस्ड है जो बाकी के पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें खाना ज्यादा है बट जो जरूरी है वो नहीं मिल रहा है, तो ओवरफेड बट अंडर नरिश्ड है, तो इसके लिए मोटापा, फिर बीमारियां एक के बाद एक, कुछ ना कुछ यू नो प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सिर्फ दो चीजों पे मैं फोकस करूंगी कि एक फ्रूट एवरी डे, कि भले ही आप स्नैक में खा रहे हो वो पकोड़ा समोसा खाने के बजाय, आप एक फ्रूट ले आओ। दूसरा जो है कि साग के जो पत्ते हैं, एक हरी सब्जी या दाल में, कोई भी फॉर्म, चटनी फॉर्म में या पराठे में, किसी भी फॉर्म में आप साग के पत्ते लाएं, और जो चावल या रोटी का जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम करके तरकारी भाजी का जो क्वांटिटी है थोड़ा बढ़ा दे, और ऑटोमेटिकली अगर तेल को थोड़ा कम कर ले, रिफाइंड जो हम लोग तेल में जितना तले हुए पदार्थ और फिर खाने में भी कितना ज्यादा तेल जो यूज होता है, तो वो प्योर फैट है, मतलब सिर्फ उसमें ना एक्स्ट्रा कैलोरीज है, तो हमें जरूरत नहीं है उतना, तो वो थोड़ा कम कर ले, तो ऑटोमेटिकली आप इसको हर मील में ये फोकस अगर लेके आएंगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप, तो पहले एक मील से स्टार्ट करें कि चलो ब्रेकफास्ट मेरा मैं और हेल्दी कैसे बनाऊं, वही पोहा खाओ, पर पोहे में एक चार वेजिटेबल्स डाल के खाओ, थोड़े स्प्राउट्स डाल के खाओ। अगर वही पराठा खा रहे हो तो पराठे में तेल कम कर लो, या घी मत डालो, या बहुत कम घी में बनाओ, अच्छे से थोड़ा फिलिंग ज़्यादा रखो। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिससे हम जो डेली खाना है उसको हम सेहतमंद बना सकते हैं। तो ये फोकस एक वर्ड पे मैं बोलूंगी कि फाइबर। फाइबर पे अगर फोकस कर लो, जब भी खाना मुंह में जा रहा है इसमें फाइबर है क्या, ये अगर हमारे दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर हम हर एवरी डे इज अ डाइट ओनली।
0: मेरे ख्याल से फाइबर की जगह अभी प्रोटीन ने ली है, क्योंकि हर कोई प्रोटीन के पीछे पड़ा है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन वेट लॉस को आता है। क्योंकि खाना बोले तो वेट लॉस करना, या फिर वेट लॉस करने के लिए जो ट्राई करते रहते हैं उनके दिमाग में ये सभी भरा पड़ा रहता है कि डाइट करे या फिर ये डाइट ले ले, इसमें ये रहना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, ये सभी बातें सोचते हैं। बट जो हमारे अगर पेरेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो जो पौष्टिक अन्न जो खाया जाता है रोज का, जैसे आपने प्लेट के बारे में बताया, तो वो सभी उनके जमाने से मतलब खाते आ रहे थे और वो चाहते थे कि बच्चे भी वही खाएं। बट अभी हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं तो हो नहीं पाता, बट अभी फिर से हमें पीछे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है
1: थोड़ा एक लेवल पे। देखो, हम हमारे परदादे के टाइम पे या दादा दादी के टाइम का लाइफस्टाइल नहीं है हमारा, वो भी एक प्रॉब्लम है ना। तो उनका 80% खाने जैसा उनका था, अगर हम अपने में 80% भी लाए ना, जरूरी नहीं है कि 100% उनके जैसे खाना जरूरी है। हमें ऑब्वियसली जो बाकी जो चीजें है, जो बन रही है, जो बिक रही है, वो और उनके भी बिजनेसेस जो है थोड़ा बढ़ावा देंगे हम, बट हमारे सेहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है। कि अगर हमारे सेहत बनी रहे तो फिर बाकी सब कुछ 100% अच्छा रहेगा, राइट?
0: करेक्ट।
1: तो इसके लिए तभी मैंने बोला ना, एक मील, आप कोई एक मील कि जो भी आपका सबसे इजीएस्ट हो आपके लिए। कि अगर लंच आपका, आपको लगता है कि अभी बहुत अनहेल्दी हो रहा है, मैं ब्रेकफास्ट तो हेल्दी खाता हूँ, कि डिनर मेरा लाइट ही रहता है। एक और भी कहावत है ना कि आप ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ नॉर्मल मैन, और डिनर लाइक अ पॉपर बोलते हैं। कि मतलब सबसे जो हल्का खाना होता है वो रात का खाना होना चाहिए। और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी या पुरानी आदतें भी ऐसी है कि सनसेट से पहले खाने का जो है, आजकल उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे बोलते हैं ना, कि आप 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे आप फास्ट करो, तो वो बहुत पौराणिक टाइम से हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बोला गया है, और जैसे अलग अलग रिलीजन्स में भी ये प्रैक्टिस है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं चाहिए। बट हम लोग रात के 12 बजे भी खाते हैं, क्योंकि है अवेलेबल है। तो ये थोड़े प्रैक्टिसेस, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, कि कभी कभार कर लिया ठीक है, बट जो 80% ऑफ द टाइम आप जो हैबिट जो बिल्ड कर रहे हैं ना, उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। कि हर वक्त का मेरा जो खाना है, अगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मैं हेल्दी बनाती रहूं, तो फिर 80% ऑफ द टाइम मेरा हेल्थ अच्छा ही रहता है। 10-20% इधर उधर 19-20 होता है, बट फोकस यही होना चाहिए कि ज्यादा ना खाए, भूख लगे तब खाए। हम लोग जैसे मैंने बोला ना, आते जाते हम लोग खाते रहते हैं, ये ना करें। मतलब गाय भैंस चरते हैं, ऐसा चरते रहते हैं, और हम भी वैसे ही चर रहे हैं ना, कि आते जाते खाते, बोलना नहीं चाहिए, बट यही आदतें हैं, दीज आर हैबिट्स जो बोलते हैं, यही हैबिट को हमें तोड़ना है। थोड़ा बहुत ब्रेक लेके कि भाई अच्छा ठीक है, लंच हो गया, उसके बाद जरूरी नहीं है कि स्नैक खाए, चाय के साथ समोसे बिस्किट, ये नहीं जरूरी है, बट आदत हो गई है तो वो आदत ना। थोड़ा हेल्दी कैसे बनाए, एक फ्रूट ले आओ उस टाइम पे। तो चाय के साथ फ्रूट बहुत लोग नहीं खा पाते हैं, पर ठीक है, तो चाय थोड़ा कम कर लो, फ्रूट ऐड कर लो। तो यू नो, थोड़े बहुत ये जो हैबिट्स है, चेंजेस धीरे धीरे करके बिल्ड करेंगे ना, तो एक हैबिट बन जाएगा। तो फोकस यही होना चाहिए कि हेल्दी हैबिट कैसे हम बिल्ड करें। हर बार, जैसे मैंने बोला, हर बार खाना मुंह में रखते हैं, सोचो कि ये फाइबर है, इसमें पौष्टिकता है, ये एक थॉट से अगर खाना खाए ना। दूसरा, जो न्यूट्रिशन के स्टैंड पॉइंट से बहुत सारे, मैंने भी पढ़ा नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, और अब जाके बहुत सारा रिसर्च आ रहा है कि हम जिस तरह से खाते हैं, सोचते नहीं है खाते टाइम, हम लोग डिस्ट्रैक्टेड है कि मतलब वहां टीवी चल रहा है या मोबाइल पे कुछ चल रहा है और हम लोग खाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बाकी चीजें जो है डिस्ट्रैक्शंस हो गए हैं और खाने पे फोकस निकल गया है। तो माइंडफुल ईटिंग जो है ना, उससे भी बॉडी में बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसे आपने बोला, मैं होलिस्टिक लेवल पे काम करती हूँ कि माइंड बॉडी कनेक्शन जो है वो बहुत पावरफुल है। तो खाना तो एक चीज है जो मेन फोकस रहता है, बट किस तरीके से खाते हैं, कितना चबा के खाते हैं। अक्षय कुमार बोलता है वो हर एक निवाला जो है वो 32 बार या 34 बार को चबाता है, वो उतना सोचने का जरूरत नहीं है हमें, बट जो खाते हैं उसको थोड़ा अच्छे से चबा के खाए, क्योंकि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ मुंह से स्टार्ट होता है।
0: अच्छा,
1: इट डजंट डायरेक्ट, खाना इधर जाके पचता नहीं है, पचता है इवेंचुअली यहीं पे, बट जो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है ना वो अपने जैसे ही हम खाना मुंह में रखते हैं वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए चबाना बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ऑटोमेटिकली हमारा जो खाने का क्वांटिटी है वो कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी को अब्सॉर्प्शन जो पौष्टिक पदार्थ चाहिए वो अच्छे से वो अब्सॉर्ब कर सकता है। तो वो चबाने का, बचपन में मम्मियां बोलती थी ना या दादी बोलते थे चबा चबा के खाओ अच्छे से, मेन रीजन ये है कि जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए जो पौष्टिक पदार्थ चाहिए वो अच्छे से अब्सॉर्ब होता है, असिमिलेट होता है। तो इसके वजह से ध्यान से खाओ कि खाते टाइम भले ही 10 मिनट के लिए खा रहे हो आप, आधा घंटा खाने की जरूरत नहीं है, वो 10 मिनट जो है सिर्फ खाने पे फोकस रखो कि भाई मैं खाना, और वो भी एक होता है कि आप रिस्पेक्ट भी दे रहे हो खाने को, तो जब आप रिस्पेक्ट दे रहे हो खाने को, उसको फोकस में रख के खा रहे हो ना, तो आप अपने बॉडी को रिस्पेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरे बॉडी के लिए ये, क्योंकि यही जो चीज है जो मुझे अब आज बैठ के बात कर रही हूँ या जो भी है मेरा सेहत है, तो ये इसके वजह से ही हो रहा है, तो इसको वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और वो जो एक माइंडफुलनेस जो बोलते हैं ना वर्ड, बहुत लोगों ने सुना होगा माइंडफुलनेस, तो इस माइंडफुलनेस के साथ खाने से थोड़ा उससे भी बॉडी में फर्क आता है, जिस तरह के अब्सॉर्प्शन होता है पौष्टिक आहार का जो है।
0: करेक्ट मैम, अभी तक हम हमारे प्लेट में क्या क्या खाना आता है वो कैसे रहना चाहिए उसके ऊपर बात कर रहे हैं, बट प्लेट में आने से पहले वो जहाँ से आता है उनके लिए भी काफी कुछ बदलाव करने चाहिए तभी वो हमें अच्छा मिलेगा, वो भी एक पॉइंट है, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो वहां तक हम जाना मतलब वो अलग ही टॉपिक हो जाता है, बट फिर भी जो खाना हम घर पे लेके आते हैं मतलब रॉ मटेरियल लेके आते हैं उसको ज्यादातर पौष्टिकता में कैसे कन्वर्ट करें उसके बारे में क्या बोलेंगे?
1: तो यू आर राइट, आजकल बहुत ज्यादा जो है हमें आइडिया भी नहीं है कि हमारा खाना किधर से आता है। पहले क्या हम मार्केट जाते थे ऑलमोस्ट हर दिन या हर दो दिन में फल सब्जी लेके आते थे, ये रोज का एक एक्टिविटी होता था। इससे भी क्या है यू नो, एक्सरसाइज जैसा हो गया कि हम मार्केट तक जाए लेके आए। मुझे भी याद है मैं बचपन में अपने डैडी के साथ मार्केट एक ही बाजार लगता था और वो बाजार में जाके उस हफ्ते का जो वेजिटेबल्स फ्रूट जो भी चाहिए वो लेके आने का। बट अभी तो हम लोगों को मिलता है कि न्यूजीलैंड से कुछ कुछ मिल जाता है, चिली से एप्पल्स मिल जाते हैं, कहीं और से कुछ और मिल जाता है। तो पर्सनली मैं तो ज्यादा लोगों को बोलती हूँ कि जो लोकली ग्रो होता है कि जो, और सीजन कि जैसे आम का एक सीजन होता है, कुदरत ने आम को एक सीजन में इसके लिए बनाया है क्योंकि वो सीजन में हमारे लिए अच्छा है। वो सेब जो है वो ठंड के रीजन में ही ग्रो करता है और वो ठंड के मौसम में मिलता है क्योंकि वो उस मौसम के लिए अच्छा है। अब सेब हमें थ्रू आउट द ईयर मिलता है, हम कभी भी खा सकते हैं, बट उसको बॉडी में कैसे, अभी मैं तो बैठ के साइंटिस्ट नहीं हूं कि मैं बैठ के रिसर्च करूं कि मेरे बॉडी के अंदर समर में सेब खाने से क्या होता है, ये मुझे आइडिया नहीं है। बट मेरा ये मानना है और एंड रिसर्च है कि लोकल जितना आप खाओ, कि जो सीजन में ग्रो कर रहा है जितना आप खाओ, और इतना ज्यादा है, वैसे तो बोलते हैं कि केमिकल फ्री खाना जितना खाओ उतना अच्छा है, बट केमिकल फ्री खाना मेरे लिए सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी जो होता है जैसे मैंने बोला कि जो कुदरत देता है उसको उस तरीके से खाने का। तो केमिकल फ्री ना हो तो भी इतना इंश्योर करो आप कि आपको जो लोकल और सीजन जो मिल रहा है, कि जैसे आम समर में ही खाओ, ना कि आम अभी भी मिलता है कहीं ना कहीं, आप जाओ पाकिस्तान से आम आते हैं, मलेशिया से आम आते हैं तो खरीद सकते हैं, बट ये सीजन नहीं है हमारे लिए खाने का, तो वो सीजन अनसीजनल जो है, जो सीजन में नहीं है वो चीजें मत खाओ। अगर आप केमिकल फ्री खा सकते हो तो खाइए, बट जरूरी नहीं है कि उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप लोकल और जो रीजनल और सीजनल खाना है। इससे क्या होता है, जैसे आपने बोला जहां ग्रो कर रहा है, जो फार्मर उगा रहा है, जो किसान मेहनत कर रहा है, लोकली खाने से उसको भी बेनिफिट होता है कि हम यहाँ कि जो उपजाऊ जमीन में यहाँ की जो उगाव है उस चीज को खाने से यहाँ के किसान को बेनिफिट होता है। और जितना मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि जितना आप मार्केट में जाके फ्रेश लेके आओ और फ्रेश बना के खाओ उतना अच्छा है, बट लोगों के पास टाइम नहीं है। सबके पास बहुत कन्वीनियंस जो एक चीज हो गया ना कि कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, पैकेट से उठा के कभी भी कुछ भी बना के खा सकते हैं, ये चीजें थोड़ा कम करके फ्रेश थोड़ा बना, भले ही बना के रख लो बट जितना हो सकता है घर पे बना हुआ खाना खाए। और जो लोकल और रीजनल जो खाना है कि इंडिया में जो मिलता है वो ठीक है, मतलब जैसे सेब यहाँ पे तो ग्रो नहीं करता है, वो आते हैं हिमाचल जम्मू से तो वो ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि समर में हम जाके कहीं और से कुछ कीवी लेके आए कि विटामिन सी के लिए कीवी खाना है। ग्वावा अभी सीजन में है, उसमें भी भर भर के विटामिन सी है। आंवला हमारे यहाँ पे काफी उगता है, उसमें भी भर भर के विटामिन सी है। नींबू है, तो जो लोकली मिलता है, जो नेचुरली हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स या जो फल और सब्जी और जो अनाज, ये हम लोग इंक्लूड करते रहेंगे डेली बेसिस पे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा जो है ये बेल्ट अपना जो है कर्नाटका जो है, ये अपने मिलेट्स के लिए बहुत फेमस है, बहुत सारे मतलब ट्रेडिशनली भी यहाँ पे रागी, जवार, जवार की भाकरी, रागी मुद्दे, ये सब खाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट भी हो गया है कि हम जो पुराने जमाने के जो अन्न होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, मिलेट्स जिसको 2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आल्सो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ग्लोबली यू नो हर जगह मिलेट्स पे फोकस आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा हमारे खाने में भी डेली बेसिस पे थोड़ा मिलेट्स अगर इंक्लूड करें, राइस को थोड़ा शिफ्ट करके मिलेट्स ले आए वापस से, मतलब पुराने तरीके से खाने लगे, तो वो भी सेहतमंद बहुत रहेगा।
0: आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही यूजफुल होगा हमारे लिसनर के लिए, और उसमें हमें भी काफी नॉलेज मिला, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपने समय निकाला उसके लिए थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मनीषा, इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू मैम। दोस्तों अभी तक हम सुप्रजा यस जी को सुन रहे थे जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है। जनरल न्यूट्रिशन के बारे में उन्होंने हमें काफी कुछ जानकारी दे दी है जो हमें डेली रूटीन में हमें बहुत ही यूजफुल होने वाली है। कैसा था आज का एपिसोड मुझे जरूर बताइएगा। उसके लिए नंबर है 9019904904। यह है केली वेणुधुनी 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार। बेळगाव मधील केएलई बीएम कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटल आरोग्य क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट सेवा देत आहे। तुमच्या रोगाचे योग्य निदान करून आवश्यक असणारे सर्व उपचार तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून दिले जातील। केएलई बीएम कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटलचा मुख्य उद्देश रोगाचे निदान करणं आणि योग्य उपचार करणं, तुमच्या आरोग्याची काळजी घेणं हेच आमचे ध्येय। तुमच्या आरोग्याच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी आयुर्वेदिक उपचार घेण्यासाठी संपर्क करा केएलई बीएम कंकणवाडी आयुर्वेदा हॉस्पिटल आणि महाविद्यालय शहापूर बेळगाव। फोन नंबर 0831 2486286

गुड इवनिंग एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे आयुष और आप सुन रहे हैं हमारा शो बी रिलैक्स। और आपने ट्यून किया है बेलगवी का सबसे बड़ा और सबसे पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू। आज का ये एपिसोड बड़ा ही सफरमय रहने वाला है, जहां हम डिस्कस करेंगे ट्रैवल प्लान्स, ट्रिप वेकेशंस, बेसिकली वो जो आप आपके इंस्टाग्राम बायो या कहीं भी सोशल मीडिया अकाउंट के बायो में लिखते हैं #travelfreak। जी हाँ, उसी ट्रैवल जर्नीज के बारे में। तो सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

Hello and welcome back to our channel Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu, and you are listening to our show Be Relax. दोस्तों, ट्रेवलिंग या सफर हमारी जिंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसे हम अपनी आम जिंदगी में नहीं देखते हैं, बल्कि हम इसे अपनी जिंदगी में यादों का और कन्वर्सेशंस का या हैप्पीनेस का एक वे मानना चाहिए। इफ यू आर हैप्पी, गो ट्रेवल। अगर आप दुखी हो तो ट्रिप्स पे जाओ। मेरी माने तो सफर आपको हर वो चीज से हील कर सकता है जिसका आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। जरूरी नहीं आप कहीं दूर जाओ, आप आपके नियर बाय प्लेसेस पर भी जा सकते हैं। और अब वक्त हो गया है आपका मनोरंजन करने का और आपको दिल छू जाने वाले गाने सुनाने का। तो बने रहिए हमारे साथ वेणु धोनी 90.4 KLE कनसू पर।

दोस्तों, ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज है, आप जब जाते हो जर्नी पर तब तो आपको वो एक स्पीचलेस बना देती है, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आप एक स्टोरी टेलर बन जाते हैं। हमारे भारत में ही देखा जाए तो कई सारी घूमने की जगह है, जैसे नॉर्थ में हिमाचल है, कश्मीर है, अमृतसर, देहरादून वगैरह वगैरह। साउथ में देखा जाए तो चेन्नई है, केरला है, हम्पी, ऊटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वेस्ट इंडिया में अगर देखा जाए तो ड्रीम सिटी मुंबई, गुजरात, गोवा और भी बहुत सारी। पूर्वी भारत यानी ईस्ट इंडिया में दार्जिलिंग, गंगटोक, कोलकाता, भुवनेश्वर, शिलांग और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जिनके बारे में शायद आपने सुना तो होगा लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए साल में एक बार अपना देश देखने की। और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में। आपने ट्यून किया है वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। मैं आयुष आपके साथ बना हुआ हूँ एक अनोखे सफर पर, जहाँ बातें हो रही है सफर यानी ट्रैवलिंग की। देखिए, ट्रिप्स कई तरह की हो सकती है। फैमिली ट्रिप्स हो सकती है, फ्रेंड्स ट्रिप्स हो सकती है, स्कूल ट्रिप्स हो सकती है, और एक आजकल बहुत ही कूल ट्रेंड चल रहा है सोलो ट्रिप्स, और भी बहुत सारी। मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं एक सोलो ट्रैवलर की ओर से खुद को देखता हूं। मैं जहां भी घूमने गया हूं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकेले ही गया हूं। आप चाहे तो फैमिली के साथ जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए हमारी यादें बनाने का एक बहुत ही बेहतर तरीका होता है। आज से 10 साल बाद, आप 5 साल बाद या 6 साल बाद, जब भी अगर आप पीछे अपनी लाइफ में मुड़कर देखोगे तो ये सफर की यादें ही आपको याद आएगी, और इन्हीं यादों के साथ हम सुनाएंगे आपको अगले हार्ट टचिंग सॉन्ग्स। स्टे ट्यून्ड टू वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जोली जोली, जोनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: मांगता हमको लेली नहीं मांगता हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता
1: तो कौन मांगता
0: ए जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

वेलकम बैक पीपल, आप सुन रहे हैं बेलगावी का सबसे पहला रेडियो स्टेशन वेणुध्वनी 90.4 KLE कनसू। मैं आपको अपनी एक ट्रैवल स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो लॉकडाउन खुलने के जस्ट बाद ही मैं एक सोलो ट्रिप पर गया था हिमाचल प्रदेश, जहाँ तक मेरा अंदाजा है शायद 10 से 12 दिन की ट्रिप रही होगी। हम जो है इंदौर के रहने वाले हैं, तो सफर हमारा इंदौर से ही शुरू हुआ। वहाँ की एक ट्रैवल कंपनी है जिसका नाम शायद बेयरफुट ट्रैकिंग से अब तो काफी टाइम हो गया, उन्हीं के थ्रू एक सोलो ट्रिप मैंने प्लान की थी। और पहले दिन हम पहुंचे ट्रिप से इंदौर टू पठानकोट, वहां से फिर डलहौसी। अब इतना सफर करने के बाद एक्सप्लोर करने का ज्यादा वक्त तो मुझे मिला नहीं, तो रात को पहुंचते ही मैं जल्दी सो गया। फिर वहां से हमारे डलहौसी से हमारे सफर की शुरुआत हुई एक बहुत ही खूबसूरत सिटी मनाली की तरफ। और बस से मनाली जाना फ्रॉम डलहौसी वॉज अ वेरी वेरी वेरी बिग टास्क। अगर आप भी इन दोनों जगहों के बीच, मनाली से डलहौसी के बीच कभी ट्रैवल करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रात को कभी ट्रैवल ना करें, जितना हो सके दिन में जाए और अपने साथ खाने की बहुत सारी चीजें लेकर जाए, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो आपके सफर में। चलिए कंटिन्यू करने से पहले आपको सुनाते हैं रंग बिरंगे गाने। सुनते रहिए वेणुध्वनी 90.4 KLE कनसू पर।

वेलकम बैक पीपल। तो हम बात कर रहे थे मेरी यानी आयुष की सोलो ट्रिप के बारे में। डल हाउसेस से मनाली पहुंचते पहुंचते मेरी तो जो है ठंड थी उस टाइम, तो ऑफकोर्स कुल्फी जम गई थी। और ऐसे ठंड में अगर आपको गर्मा गर्म पानी का शावर मिल जाए तो जन्नत से कम नहीं होगा। शावर लेने के बाद पूरी रात मैंने सिर्फ मनाली शहर और मनाली के सारे मार्केट देखने में गुजार दी। और नेक्स्ट डे मैं अपनी बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए एक ऐसे एडवेंचर्स के लिए गया जिसे मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं। और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। जिसमें सबसे बड़ा जिसको कहते हैं एडवेंचर ऑफ द ट्रिप, वो था पैराग्लाइडिंग। अब मैं आपको पैराग्लाइडिंग के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि पैराग्लाइडिंग में आपको एक पायलट के साथ एक पैराशूट पहनकर कई हजारों फीट ऊंचे पहाड़ से छलांग लगाना पड़ती है। थोड़ा डर तो आपको भी लगा ही होगा सुन के। मैंने भी केवल सुना था, लेकिन जैसे जैसे मैं सोलांग वैली पहुंचा और मेरा नंबर आने वाला था, मेरी हवा वहीं थोड़ी टाइट हो गई। सुनाऊंगा आपको आगे की कहानी आफ्टर दिस सुपर हिट सॉन्ग्स। स्टे ट्यून्ड टू अस ऑन वेणु धोनी 90.4 KLE कनसू।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। तो दोस्त, जैसे पैराग्लाइडिंग के लिए मेरा नंबर आया हो और जब सोलंग वैली में लगभग 9000 फीट की ऊंचाई से मैंने छलांग लगाई, कसम से वो अनुभव मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। और उसमें सबसे फनी चीज ये हुई कि हमारा जो गोप्रो था, गोप्रो एक तरीके का कैमरा होता है जो आपको स्टिक से पकड़ना पड़ता है, तो जो हमारा गोप्रो था वो पायलट हमारे जो है ऑन करना ही भूल गए। मेरे पास एक भी वीडियो या फोटो नहीं आई। अब समझ ही सकते हो आप मेरा दर्द क्या गुजर रही होगी उस वक्त मुझ पर। तो और दोबारा कूदने की मेरे में हिम्मत नहीं थी। अब 9000 फीट की ऊंचाई से एक बार कूदने वाला इंसान दूसरी बार तो क्या ही होगा, पता नहीं। इन्हीं एडवेंचर्स में से एक और सबसे एक्साइटिंग एडवेंचर्स था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसका नाम था रिवर राफ्टिंग। दोस्तों, रिवर राफ्टिंग में आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ एक राफ्ट होती है, एक नाव जो होती है, उसको एक एक्सपीरियंस रोवर जो होते हैं, जो बोट को चलाते हैं, उनके साथ नदी में जाना पड़ता है, जो नदी काफी पथरीली हो सकती है, ज्यादा बहाव वाली हो सकती है। दोनों एडवेंचर्स अपने ही आप में एक बहुत ही एक्साइटिंग थे। ऐसे ही मैंने अपनी बकेट लिस्ट को पूरा किया। बताऊंगा आपको आगे की जर्नी के बारे में। सुनते रहिए वेणु धोनी 90.4 KLE कनसू।

क्या बात है, अब तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो बी रिलैक्स में आरजे आयुष के साथ, और आपने ट्यून किया है बेलगम का सबसे पहला रेडियो स्टेशन वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसु। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरी एक ऐसी एडवेंचरस हिमाचल ट्रिप के बारे में। तो जैसे ही मैंने ये दो एडवेंचर्स किए, उसके बाद मेरा हिमाचल जाना एकदम सफल हो गया। खैर, कई एडवेंचर्स और भी थे, जैसे बंजी जंपिंग, स्कीइंग वगैरह वगैरह। और फिर वहां से हम लोग सोलांग वैली का ट्रिप खत्म करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है मणिकरण, जहां हम सबसे पहले गुरुद्वारा गए। और दोस्तों, इस जगह के आपको एक खासियत मैं बताता हूँ कि यहाँ एक ऐसी नदी है या ऐसा पानी का स्रोत है जहाँ हमेशा गर्म पानी बहता है, जो कई मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स से युक्त भी होता है। इन सब के बाद हमारी ट्रिप पहुंची कसोल, और नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे धर्मशाला। जी हाँ, धर्मशाला, जहाँ क्रिकेट का एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम है। वहां घूमने के बाद हमारी सवारी वापस इंदौर की ओर यानी घर की तरफ चल पड़ी। और एक खास बात, जब आप पहाड़ों में होते हो तो प्लीज प्लीज जाकर वहां पर सनराइज जरूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। और अब वक्त हो गया है आपको मनोरंजन करने का और आपको धमाकेदार गीत सुनाने का। सुनते रहिए वेणुध्वनि 90.4 KLE कनसु।

हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर शो बी रिलैक्स। और हमने बात की आज के एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर। उम्मीद है आपको हमारी स्टोरीज और कन्वर्सेशंस पसंद आए। मेरा आप सभी को एक सजेशन है कि साल में एक बार या तो दो बार या एक बार आप जा सकते हैं दोस्तों के साथ या आपके परिवार के साथ या अकेले ही, अगर जैसा आपको ठीक लगे, एक बार ट्रैवल जरूर करें। ट्रिप्स पर जाए, एंजॉय करें अपनी लाइफ। मे योर ट्रैवल बी फुलफिल्ड विद अनफॉरगेटेबल मेमोरीज एंड मोमेंट्स। और देखिए, अपने अंदर वो एक्साइटेड बच्चा हमेशा जिंदा रहने दीजिए जो आपको कभी भी रुकने नहीं देगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस। जल्द मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ। हमारा शो बी रिलैक्स। मैं हूं आरजे आयुष और सुनते रहिए विनू धोनी

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 KLE का नसूबे आप ट्यून है यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड न।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ई कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुन और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।